एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहामला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ।
1: को किनारे रख दो, यही सफल होने का तरीका है। ये विचार स्वामी विवेकानंद का है। ये था अब आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

0: देखा, मतलब
1: लिटरली
0: लिटरली उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूँ। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूँ अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूँ, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को, बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू specifically ask me any of the song, I love all the songs, I can sing any one of it, I won't mind.
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए तो मैं पहले हृदय में जिनके सीताराम ही गा देता
1: हूं। जी एक लाइन सुना दीजिए।
0: जी एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
1: जी

0: परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के, फैमिली मेम्बर्स एक एक करके जा रहे थे। तो मेरे फर्स्ट कज़िन, मेरे मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में,
1: जी
0: वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह हैं, उनकी माता जी,
1: जी
0: ऐसे
1: जी
0: बहुत सारे लोग, कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर, मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब मैं एज अ मेडिकल, मतलब डॉक्टर, आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था। और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी, जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज़ बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है, वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब, मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
1: जी जी जी
0: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक एक एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके ओके, तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या, तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चले गए। और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई। तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
1: अभी सुनाइए
0: हनुमान चालीसा चैट एज इन
1: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है। तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहां पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
0: जी, जी।
1: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं हनुमान चालीसा मैं गा दूंगा, पर मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइंस। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपके सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री नीपकोले बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहने, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है, पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: ईस्ट को
0: ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है, और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। द अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुम्हारे पास, सो यू हैव द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुम्हारे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों, हृदय भसों स्वरूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में

0: आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसे लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धियां अवनीति के दाता, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं, और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें, जो सिद्धियां जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं, क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन दाता असबर दिन ऐसा वर सीता दिन दिन जानकी माता
1: जी।
0: तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे अस्क श्रीपति कंठ लगावे, जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे, इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। यहाँ तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहाँ पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000-5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट ही इज पॉपुलर, कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे, बराक ओबामा,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, डर से निजात पाने के लिए हम सब भी वो करते, डर लगता
0: था, डर लगता था, हनुमान चालीसा पढ़ना
1: शुरू करते, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अंधेरे कमरे में पार करना है
0: करेक्ट,
1: तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है।
0: वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
1: जी जी।
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, संकट हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे जी,
1: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते हैं?
0: मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ
1: जी जी, प्लीज सुनाइए
0: जी जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय सिया राम जय सिया राम। हाथ बज्र और

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे, बट
1: गाने की बात चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में। वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर इंजीनियर
0: आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था, 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूज डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियाँ पता चली वैसे मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता तो वहाँ पे बुंदेलखंड में, तो जहाँ पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी टिशू के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते ना कि परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, तो 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाक जी वहाँ पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन, तो 4-5 साल वहाँ पे, फिर वो रॉक वॉक गाते थे, और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो completely मेरे उसको commercialize करता नहीं हूँ, music को कुछ भी commercialize नहीं करता. So it's a very soul satisfying sort of an event for me every day. लेकिन neck for music, finding great music, recognizing great talent, musical talent is probably one art I developed over the period of मतलब multiple years, decades I'll say. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: था। तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना का फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म

0: म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है. एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड. 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है. विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर. तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेरे मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री, के लिप सिंक नहीं करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है. गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का. थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं. अच्छा, आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले दो वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी. फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हुए चौथे वीक से,
1: और गाने बजने,
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया.
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: रील बनने लगे, हजारों की संख्या, मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया. अब जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी. 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है.
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है, और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दें श्रोताओं को.
0: जी मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ. जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि सप्त ऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोले नाथ, भोले नाथ. शंभो शिव शंभो.

0: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
1: जी।
0: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
1: में, और
0: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
1: जी।
0: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली क्या गानों के बारे में ही?
1: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
0: जी, जी।
1: उनके सानिध्य में काम किया
0: जी।
1: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना, सिनेमा सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नज़र है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं उनके भी, म्यूजिकल तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और वो उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की हैं, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
0: अनेक भीड़
1: तो ये अभी की फिल्म्स हैं, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म्स बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम्स उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, एक शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिस पे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लेके आया।
0: अच्छा।
1: फिल्म का नाम था, उस वक्त उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता

0: उस रात को, लेकिन उन्हें उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है। हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी है, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ। और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतने ही उनके लिए हृदय में उतने ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
0: जी।
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
0: जी जी,
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
0: बुंदेलखंड में पैदा हुआ जैसे मैंने बताया, बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूंकि तो मैं क्या हो रहा था पिछले दो तीन साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
0: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था। तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
0: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा, मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू। बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था, तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे। तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया। मैंने कुछ उसमें लाभ लग गया बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पे कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, बहुत गूढ़ शब्द हैं उसमें
1: जी जी,
0: सागर में नैया डार दे, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार
1: जी जी बिल्कुल याद आई,
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दई। सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दे के, और हनुमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां बैठन हारी
1: जी,
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवन हार कौन है, हनुमत खेवन हार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवन हार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंप्लीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स से भी पता नहीं, अभी देखेंगे तो लगता मिलियन हो गई या 5 मिनट के हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने, हाँ।
1: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना, और गाने हिट हो रहे हैं, रीले बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेज आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
0: दिख जाता है
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है,
1: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो सेट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: मोबाइल में है, जबकि
1: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो, हाथ से जब आप लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
1: होते रहते हैं।
0: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में, हाँ। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
0: फेवरेट,
1: हाँ। प्रेम पुजारी का गाना है,
0: लिखा हुआ सचिन देव बर्मन संगीतकार,
1: तो
0: सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था, और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं
1: जी।
0: बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहाँ पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रॉन्ग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो था ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा खोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं और फिर वो चली जाती हैं वहाँ से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जो मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहाँ से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है
0: जी, जी।
1: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है। स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर इनफैक्ट वो नत्था वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो एक एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत

0: कि बोलियों में गाने चाहिए थे, तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर, तो ये सारे गाने जो है ना एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
1: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं। हर हर

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

पुष्प बनकर हंसना जिंदगी है, खुश रहकर दुख भूल जाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना हमारी जिंदगी है। सफर है दोस्ती का जिसका कभी अंत नहीं होता, दोस्ती ही हमारी सबसे प्यारी जो कभी खत्म नहीं होती। दोस्ती के इसी सफर को निभाने के लिए एक बार फिर से हाजिर है आपकी सखी कविता सैनी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं ज्ञान की ढेर सारी बातें, बहुत सी जानकारी और आपके मनोरंजन के लिए की संगीत। सखियों, कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रसोई से लेकर दफ्तर तक और हमारे बच्चों की पढ़ाई से लेकर हमारे खुद के स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर रहा है। वह विषय है आधुनिक जीवन शैली और तनाव प्रबंधन। सखियों, आज जब हम सब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है, मोबाइल के अलार्म बंद करने और मोबाइल के नोटिफिकेशन देखने पर। यहीं से शुरू होती है हमारी आधुनिक जीवन शैली यानी मॉडर्न लाइफ स्टाइल। आज दुनिया बदल चुकी है। आज हमारे पास हाथ बटाने के लिए वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, ऑनलाइन शॉपिंग है और मिनटों में जानकारी देने वाला इंटरनेट है। ऊपर से देखने पर लगता है कि जिंदगी कितनी आसान हो गई है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अनचाहा मेहमान हमारे घरों के अंदर आ गया है जिसे हम तनाव यानी स्ट्रेस कहते हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली ने हमारा हमसे सुकून छीन लिया है। पहले के समय में सुख सुविधाएं भले ही कम थी, लेकिन लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त था, समय था। आज हमारे पास सब कुछ है, बस वक्त को छोड़कर। सखियो, पुरानी कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, संतोष परम सुखम, लेकिन

आज की आधुनिक जीवन शैली की परिभाषा बदल गई है। आज की जीवन शैली का मतलब है रफ्तार, प्रतियोगिता और हर चीज में परफेक्ट होने का दबाव। यही तनाव का कारण बनता है। जब हम तनाव की बात करते हैं तो हम महिलाओं पर इसका दोहरा असर पड़ता है। आज की महिलाएं केवल घर के चौखट तक सीमित नहीं है, वे बाहर जाकर नौकरी कर रही है, व्यापार संभाल रही है, साथ ही चूल्हे चौके, बच्चे की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। इसे हम सुपर वुमेन बनने की होड़ भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर चीज में परफेक्ट दिखने की यह चाहत धीरे धीरे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी भारी पड़ने लगती है। सखियों, तनाव का सीधा असर हम महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज कम उम्र में ही थायराइड, पीसीओडी, माइग्रेन, असमय थकान और डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हो गई है। जब माँ या घर की मुख्य महिलाएं तनाव में होगी तो उसका सीधा असर बच्चों के व्यवहार और घर के माहौल पर भी पड़ता है। सखियों, आधुनिक जीवन शैली में तनाव के कई कारण हैं, जैसे कि अंधाधुंध भागदौड़ और खुद के लिए वक्त ना होना। हम पूरे दिन घड़ी की सुइयों पर नाचते हैं। सुबह बच्चों का टिफिन, फिर ऑफिस की फाइलें, शाम को आकर फिर से रसोई का काम। इस पूरे टाइम टेबल में हम खुद को कहां रखते हैं? शायद सबसे आखिरी पायदान पर, जिसके चलते हम तनाव में आ जाते हैं। सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति। सखियों, आज हम अपनी असल जिंदगी को दूसरों की वर्चुअल जिंदगी से तुलना करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर किसी सहेली की घूमने की तस्वीरें या नया घर देखकर मन में अनजाने ही एक हीन भावना या पीछे छूट जाने का डर पैदा हो जाता है। इस दिखावे की होड़ में हम अपनी शांति खो बैठते हैं। देर रात तक मोबाइल देखना, नींद पूरी ना होना और सुबह उठते ही चाय के साथ फिर से फोन देखना, चाय या कॉफी के सहारे खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करना और फास्ट फूड पर निर्भरता हमारे शरीर में तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ा देती है। सखियों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम इस आधुनिक जीवन शैली को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, हमें समय के साथ चलना ही होगा। तो फिर तनाव से कैसे बचे? बहनों, तनाव को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनौतियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन समाधान हमारे हाथों में है। हमें अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे मगर महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, जैसे कि ना कहना सीखे। आप सुपर वुमेन हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप एक इंसान भी हैं। हर काम को अकेले करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ना ले, परिवार के अन्य सदस्य के साथ जिम्मेदारी बांटे। मी टाइम यानी खुद के लिए समय पूरे दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाले। इस समय में आप वह करें जो आपको पसंद हो, जैसे संगीत सुनना, बागवानी करना, किताबें पढ़ना या सिर्फ शांति से कुछ समय बैठना। सोने से कम एक घंटे पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद फोन से दूरी बना लें। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से निकलकर परिवार के साथ वास्तविक बातचीत का आनंद लीजिए। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और पानी की सही मात्रा शामिल करें। सुबह सिर्फ 15 मिनट का प्राणायाम या ध्यान आपके मस्तिष्क को ऊर्जा और शांति दे सकता है। जब भी मन भारी हो, अपने किसी सहेली, माँ या जीवन साथी से खुलकर बात कीजिए। अपनी भावनाओं को मन में दबाकर ना रखें। सखियों, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही अगर हमारे शरीर और मन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो हम अपने परिवार को कैसे संभालेंगी? खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं बल्कि एक स्वस्थ परिवार की नींव है। इसलिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, इसे तनाव में ना गंवाएं। आधुनिक जरूर बनिए, लेकिन अपनी जड़ों, अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। अपनी सेहत का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं बल्कि आपकी और आपके पूरे परिवार की जरूरत है। जब एक महिला मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रहेगी, तभी उसका घर और यह समाज मुस्कुराएगा। उम्मीद करते हैं हमारी ये बातें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आप तनाव से दूर रहेंगी। मुस्कुराइए, थोड़ा ठहरिए और जिंदगी को खुलकर जिए। तो आइए इस भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए थामते हैं और सुनते हैं ये गाना।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: स्वागत है सखियो एक बार फिर से आपके अपने ही कार्यक्रम महिला जगत में। सखियो कार्यक्रम में

अब आपको जानकारी देते हैं एक ऐसे प्राकृतिक उपहार के बारे में जो न सिर्फ हमारी रसोई और अलमारी का हिस्सा है बल्कि दुनिया भर के करोड़ों परिवार की आजीविका का आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपास यानी रुई की, जिसके महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस हर साल आज के दिन यानी 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गरीबी उन्मूलन और दुनिया भर के करोड़ों लोगों, विशेषकर छोटे किसानों और मजदूरों की आजीविका में कपास की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2019 में की गई, ताकि दुनिया भर में कपास के महत्व और इससे जुड़े करोड़ों किसानों व श्रमिकों के योगदान को सराहा जा सके। सखियों, कपास सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि गरीबी मिटाने, रोजगार देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने का एक बड़ा जरिया है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक मंच भी इसके सतत उत्पादन और व्यापार नीतियों पर जोर देते हैं, ताकि छोटे किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। सखियों, आप सोच रही होंगी कि महिला जगत में कपास की हम बात क्यों कर रहे हैं, तो बहनों आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया भर में कपास उत्पादन से जुड़े लगभग 2.4 करोड़ किसानों में से करीब आधी संख्या हमारी ग्रामीण महिलाओं की है। खेत में बीज बोने, कपास चुनने से लेकर टेक्सटाइल मिलों में धागा और कपड़ा बनाने तक महिलाओं का श्रम और हुनर इस पूरी श्रृंखला की रीढ़ है। कपास महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। सखियों, भारत में तो कपास का इतिहास सदियों पुराना है। महात्मा गांधी जी के चरखे और खादी की आत्मनिर्भरता की जो कहानी है, उसकी आत्मा भी कपास ही है। कपास केवल आरामदायक सूती कपड़े या पूजा की बत्ती तक सीमित नहीं है। कपास के बीज से निकलने वाला तेल खाने और सौंदर्य प्रसादनों में काम आता है और इसकी खली पशुओं के लिए पौष्टिक चारा बनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंथेटिक कपड़ों के मुकाबले कपास पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है। यह एक प्राकृतिक फाइबर है जो हमारी धरती माँ को प्रदूषित होने से भी बचाता है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सखियों, कपास देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा जरिया है। तो आइए विश्व कपास दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम सूती और खादी उत्पादकों को बढ़ावा देंगे, जिससे न केवल हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण बेहतर होगा बल्कि उन लाखों ग्रामीण बहनों के घर में भी श्रमदी आएगी जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर इस सफेद सोने को उगाती है। इसलिए आप जब भी बाजार जाएं तो सूती यानी कॉटन के कपड़ों को प्राथमिकता दें। इस विश्व कपास दिवस पर हम सब मिलकर स्वदेशी और प्राकृतिक कपास को अपनाएं और पर्यावरण को बचाने में अपना छोटा सा योगदान दें। सखियों, कपास जिससे हमारी संस्कृति, हमारी खादी और हमारा रोजगार जुड़ा है, इसी कपास, सूत और चरखे की याद दिलाता हमें यह खूबसूरत गीत। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: सिक्योर कार्यक्रम के अंत में विविधा के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे, बेहद जरूरी है बायोटीन। सिक्योर आज के दौर में जब हम अपनी सेहत और खूबसूरती की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान महंगे कॉस्मेटिक्स, पार्लर ट्रीटमेंट्स, ये तरह तरह के महंगे प्रोडक्ट्स पर जाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमारी असली खूबसूरती और सेहत का राज किसी भारी डिब्बे में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर एक बेहद छोटे लेकिन जादुई पोषक तत्व में है। जी हाँ बहनों, आज हम बात कर रहे हैं बायोटीन की। इसे विटामिन B7 या विटामिन H भी कहा जाता है। H यानी हार और होत, जो जर्मन भाषा के शब्द हैं, जिनका मतलब होता है बाल और त्वचा। आज हम विविधा में जानेंगे कि क्यों हमारे शरीर के लिए, खासकर हम महिलाओं के लिए बायोटीन इतना बेहद जरूरी है। बायोटीन सखियों पानी में घुलनशील विटामिन है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता और न ही इसे लंबे समय तक जमा करके रख सकता है, इसलिए हमें हर दिन अपने भोजन के जरिए इसकी सही मात्रा लेनी होती है। इसका सबसे मुख्य काम है हमारे खाए हुए भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलना। जब शरीर में बायोटीन की सही मात्रा होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म मजबूत रहता है, जिससे हमें दिन भर थकान महसूस नहीं होती और हम खुद को एक्टिव महसूस करते हैं। आइए बात करते हैं उन फायदों की जो हर महिला की पहली चाहत होती है। घने और चमकदार बाल। आज के समय में बाल झड़ने की समस्या से हर दूसरी महिला परेशान है। बायोटीन हमारे बालों में पाए जाने वाला केराटिन नाम के प्रोटीन के ढांचे को बेहतर बनाता है। इससे बाल झड़ने से मजबूत होते हैं, उनका टूटना कम होता है, साथ ही उनकी चमक वापस आती है। सक्यो, कई बार हमारे नाखून बहुत नाजुक हो जाते हैं और जरा सी चोट लगते ही टूट जाते हैं या परतों में निकलने लगते हैं। बायोटीन नाखूनों की रूखेपन को दूर कर उन्हें मजबूती देता है। त्वचा में रूखापन, चकत्ते या असमय झुर्रियां आने का एक कारण बायोटीन की कमी भी हो सकता है। यह त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ रखकर चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है। बहनों, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में बायोटीन बहुत तेजी से टूटता है। शिशु के सही विकास के लिए डॉक्टर की सलाह पर इस दौरान बायोटीन की सही मात्रा लेना आवश्यक माना जाता है। आइए सखियों, अब जानते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में बायोटीन की कमी है। अगर आपके बाल अचानक बहुत ज्यादा झड़ने लगे, नाखून कमजोर होकर टूटने लगे

आंखों, नाक या मुंह के आसपास लाल रंग के दाने ये चकत्ते दिख रहे हैं या फिर बिना वजह बहुत ज्यादा सुस्ती और थकान महसूस कर रही हैं, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपके शरीर को बायोटिन की जरूरत है। इतना जानने के बाद आप सोच रही होंगी कि हम इस जरूरी विटामिन को कैसे हासिल करें। इसके लिए किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, हमारी रसोई और रोजमर्रा के खान पान में ही इसका खजाना छुपा है। जैसे कि अंडे की जर्दी, अगर आप अंडा खाती हैं तो अंडे का पीला हिस्सा बायोटिन का सबसे बेहतरीन स्रोत है। सूखे मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज बायोटिन से भरपूर होते हैं। रोज सुबह मुट्ठी भर भीगे हुए मेवा खाना बहुत फायदेमंद है। हमारी थाली की शान चना, सोयाबीन, राजमा और हरी मटर में भी बायोटिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही हरी सब्जियां और फल जैसे शकरकंद, पालक, ब्रोकली और फलों में केला और एवोकेडो बायोटिन की बहुत अच्छे माध्यम है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही और पनीर का नियमित सेवन भी शरीर में इसकी कमी को पूरा करता है। सखियों, आज विविधा में हमने जाना कि एक छोटा सा विटामिन हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए कितना बड़ा मददगार साबित हो सकता है। चमकते बाल, मजबूत नाखून और भरपूर ऊर्जा पाने के लिए आज से ही अपनी डाइट में इन प्राकृतिक चीजों को शामिल करें। यदि कमी बहुत ज्यादा लगे तो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ही कोई सप्लीमेंट शुरू करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ और खुश रहती है तभी पूरा परिवार और समाज मुस्कुराता है। तो सखी, चलते चलते आइए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, आज के महिला जगत कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते चंद लाइन आपके लिए। रिश्तों में सदा प्यार की मिठास रहे, कभी न मिटने वाला एहसास रहे। कहने को तो ये छोटी सी जिंदगी है, मगर दुआ है आपके साथ रहे। आपका और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता सैनी को कार्यक्रम महिला जगत से जाने की अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और इस प्यारे से मौसम को अपने बाहें फैला के वेलकम कर रहे होंगे। तो चलिए, अब आप सभी को पता है कि आज कौन सा दिन है और आज हमारा कौन सा स्पेशल सेगमेंट है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देती हूँ। दोस्तों, आज है हेलो फरमाइश, जिसमें आप हमें फ़ोन करते हैं और बताते हैं अपनी पसंद के गाने और हम उन्हें सुनवाते हैं और आप लोगों से करते हैं कुछ थोड़ी बहुत बातचीत। तो चलिए बिना देरी करे बढ़ते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ।
1: नमस्कार मैडम, चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए क्या काम करते हैं आप।
1: मैं SECL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ। नौकरी पीरियड में ही कई केंद्र में फोन करता हूँ, आपके केंद्र भी अलवर आकाशवाणी में जुड़ा हूँ। और तो सबसे पहले आपको दुर्गा आने वाली दुर्गा पूजा, दशहरा और क्या बोलती है दीपावली और छठ पूजा की ढेर खाती शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और जी, और मैं आज अपने पसंद के गीत बता देता हूँ। फिल्म का नाम है नमक हलाल
0: जी।
1: और गाने का बोल है पग घुंघरू बांध मीरा नाचीते गाय किशोर कुमार, ये अमिताभ बच्चन जी का फिल्म का गाना है।
0: आप करते क्या है, आप दोबारा बताएंगे हमें।
1: मैं SECL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल।
0: तो क्या आपका क्या काम रहता है यहाँ पे।
1: यहाँ पर वही MTK में रहता हूँ मैडम, वही हाजी ऑफिस के पास रहता हूँ, हाजी ऑफिस में ही रहता हूँ।
0: अच्छा।
1: और पूरा देख रेख मेरा रहता है काम, और उनको देखना पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा।
1: हाजी ऑफिस पे हम लोग देख के लगाते हैं।
0: तो आपका काम अभी सही चल रहा है।
1: जी मैडम, बहुत सही चल रहा है, ड्यूटी भी सही चल रहा है और सही टाइम पे आते हैं, सही टाइम पे जाते हैं, बस थोड़ा सा आगे।
0: तो आप अपनी फैमिली को, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं वहाँ पे, फैमिली कहीं और रहती है।
1: फैमिली के साथ ही रहता।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छा।

0: की बात है। तो हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम आपको अभी आपका गाना सुनवाते हैं।
1: बुजुर्गों ने

0: हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसपुरा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए प्रेम जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं, बिल्कुल ठीक हैं।
1: जी मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हाल है मौसम के आपके वहाँ?
1: जी मौसम काफी अच्छा साफ है और ठंडी हवाएं भी चल रही है और साथ में तेज धूप भी है। किसानों ने अपने अपने खेत में सोयाबीन की फसल लगाई थी जो अभी कटिंग हो चुकी है और निकाल भी दी कुछ मतलब लोगों ने।
0: चलिए अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ इस मौसम के बदलाव में कहीं तबियत वबियत का तो ध्यान रख रहे हैं ना आप अपना अच्छे से?
1: हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखते हैं, समय समय पर पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और काम में व्यस्त रहते हैं और हंसते हुए अपना काम करते रहते हैं सभी लोग।
0: जी प्रेम जी, इस मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, इसमें तबियत बहुत जल्दी खराब होती है। तो आप बताइए आपका परिवार कैसा है?
1: जी सभी लोग काफी अच्छे हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी प्रियंका, तीन बच्चे हैं, बिंदिया सिसोदिया, कृष्णा सिंह सिसोदिया और साक्षी सिसोदिया।
0: जी अच्छी बात है। तो प्रेम जी आप वैसे खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं?
1: खाली समय तो मिलता नहीं है, बट अगर मिलता भी तो मैं एक भजन गायक हूँ तो अपने भजन की रियाज करता हूँ।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। भजन के अलावा वैसे कुछ आजकल जैसे फिल्मी गीत वगैरह होते हैं, आप वो भी गाते हैं?
1: फिल्मी गीत में तो बहुत कम रुचि है, बट कोई सा गीत ऐसा आता है ना हो तो कभी कभार गा लेते हैं।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आपकी कौन सी फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है आपकी कसम।
0: जी
1: और गाने के बोले करवटे बदलते रहे सारी रात हम।
0: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम अभी आपको आपका गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में।
0: नमस्ते मैडम
1: जी, बताइए क्या नाम है आपका?
0: गिरिराज प्रसाद बोल रहा हूँ
1: जी। बताइए गिरिराज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: लाल खाना से पूरा से।
1: चलिए, तो कैसा मौसम है वहाँ पे?
0: इस समय तो धूप पड़ रही है मैडम।
1: अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप?
0: सिलाई का काम करते हैं।
1: कैसा चल रहा है आपका काम?
0: काम है अभी तो कम है थोड़ा।
1: अरे कम कहाँ से, अभी देखिए अक्टूबर का महीना आपको पता ही है, सारे फेस्टिव सीजन का होता है ये। अब ये आने लग जाएंगे फेस्टिवल धीरे धीरे करके, तो फिर सिलाई आपकी अच्छी हो जाएगी।
0: हाँ जी, नवरात्र से चालू हो जाएगा काम।
1: हाँ, तो फिर नवरात्रों में फिर क्या क्या सिलवाएंगे लोग आपसे? लहंगे वगैरह सिलवाते हैं?
0: नहीं, हम सूट सलवार सिलते हैं मैडम।
1: बस सूट सलवार सिलते हैं
0: जी।
1: लहंगे वगैरह भी सिलिए, उसमें बहुत मार्जिन होता है।
0: नहीं, वो कारीगर

0: अच्छा
1: अच्छा पूरी मार्केट में मार हुआ है, तिलक मार्केट में, न्यू लाइट टेलर।
0: अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, अच्छी बात है। तो बताइए, और घर में सब ठीक है आपके?
1: हाँ जी, सब ठीक है।
0: तो वैसे

0: काम करना पसंद करते हैं आप सिलाई के अलावा?
1: सिलाई के अलावा फिर रेडियो चला कर बैठ जाते हैं खाली टाइम पर,
0: बस गाने वाने सुन लेते हैं।
1: हाँ, अलवर के दो प्रोग्राम आ रहा है आजकल अलवर के।
0: कौन कौन से?
1: एक तो आकाशवाणी अलवर का, एक FM का और आ रहा अलवर का ही।
0: जी जी आ रहा है
1: ना?
0: जी तो चलिए, तो मतलब रेडियो सुनना पसंद है ना?
1: हाँ जी, दोनों स्टेशन सेट कर रखे मैंने।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और पिक्चर वगैरह देखने का भी शौक रखते हैं?
1: पिक्चर तो मैं पुराने देखता था, जो पहले देख ली सारी फिल्में, अब तो मैं टीवी नहीं देखता इतना।
0: आप टीवी नहीं देखते? फिर फोन वगैरह में तो आजकल सब आ ही जाता है।
1: हाँ आ जाता है, लेकिन हम देखते नहीं, हम तो रेडियो चलाते हैं फिर काम कर लेते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आप आए भाराई का तारे कितने मील गगन पे तारे, वो गाना सुनाओ आज।
0: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम आपको ये गाना अभी सुनवाते हैं।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में।
1: मैडम नंदूपुर से बोल रहा हूँ, अलापुर से।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो?
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। और कैसा चल रहा है सब काम काज, कैसा चल रहा है आपका?
1: सब बड़े चल रहा है।
0: क्या काम करते हैं ऐसे आप?
1: मैडम खेती बाड़ी करते हैं, प्याज लगाई है, गुड़ उड़ दे के आए हैं अभी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है।
1: मैडम मौसम कैसा है आलोर का?
0: जी मौसम तो ऐसा ही है, कभी ठंड हो जाती है थोड़ी थोड़ी, कभी गर्मी हो जाती है, तो आज तो थोड़ी गर्मी ही है।
1: हाँ तो गर्मी से बदल भी होते हैं आज।
0: हाँ कभी कभार बीच में बादल भी हो जाते हैं। जी तो और बताइए क्या चल रहा है, पसंद करते हैं आप, हॉबीज क्या क्या है आपकी?
1: मैडम रनिंग करते हैं सुबह, वॉर्मिंग अप, मेडिटेशन।
0: अच्छा मेडिटेशन वगैरह करते हैं आप?
1: हाँ घूम

0: उठते हैं फिरते हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना।
0: हाँ मैडम।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह जैसे?
0: नहीं मैडम, यहाँ पर कोई मैदान नहीं है मैडम, बस पहाड़ी पे बसा हुआ गांव है।
1: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो पहाड़ से फिर अच्छा नजारा दिखता होगा।
0: हाँ मैडम, हमारे घर है ना,
1: जी
0: हमारे घर से आकाशवाणी का जो टावर लगा पड़ा है ना,
1: जी जी
0: इस पर क्लियर क्लियर दिखाई देता है मैडम, मैं
1: अच्छा,
0: देख रहा हूँ। हाँ मैडम,
1: क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है।
0: हाँ
1: दूर
0: मैडम,
1: से ही देख लेते हैं फिर आप रेडियो
0: ये
1: को,
0: तो
1: ना?
0: देख लेता हूँ मैडम, टावर हो रहा है
1: चलिए
0: आकाशवाणी
1: चलिए, ये
0: केंद्र
1: तो
0: का।
1: बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप आज?
0: मैडम जुड़ा मूवी का है ना, दुनिया में आए तो लव कर लो।

0: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्कार, स्वागत है हेलो फरमाइश में। बताइए, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है, मैं माचारी से बोल रहा हूँ।
0: जी सुशील जी, बताइए कैसे हैं आप?
2: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, कैसे हैं आप सुशील जी?
2: ठीक है सर।
0: और स्कूल का काम सही चल रहा है?
2: सही चल रहा है।
0: चलिए, अच्छी बात है। फिर फ्री हो गए अभी आप स्कूल से, या अभी बच्चे हैं स्कूल में?
2: फ्री हो गया, घर आ रहा हूँ मैं माचारी।

0: अच्छा, घर जा रहे हैं आप? घर कैसे जाते हैं आप, रिक्शे वगैरह से?
1: हाँ रिक्शे से जाता हूँ, काम
0: अच्छा,
1: पर जा रहा हूँ।
0: चलिए सही है फिर, घर पास ही तो है ना आपका, दूर थोड़ी पड़ता होगा?
1: माचड़ी है, राजगढ़ काम करता हूँ।
0: अच्छा, तो दूर पड़ता है मतलब, है ना?
1: हाँ 7 किलोमीटर है। ठीक
0: अच्छा चलिए, और बताइए सुशील जी,
1: है
0: घर में सब ठीक
1: सुशील।
0: है?
1: हाँ ठीक
0: चलिए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: है। मोहरा फिल्म का गाना है ना, कजरी की धार ना मोती की धार।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी

0: रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में 6:10 पर और संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे। संध्या 7:00 वक्त रहेगा कार्यक्रम ग्राम भारती का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से। और रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। 11:05 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी।

कल सुबह हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 पर। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 6:05 पर कार्यक्रम वंदनवार। 6:35 पर रामचरित मानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता। सुबह 7 बजे वक्त रहेगा कार्यक्रम नमस्कार अलवर का। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कल सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। 8:15 पर सुगम संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुबह 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे। 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला आकाशवाणी दिल्ली से। और 9:45 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से। कल दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 2 बजे समाचार अंग्रेजी में। 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। और 2:30 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से। कल संध्या के हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। 6:10 पर और संध्या 7:30

तीस मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे। कल संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से किया जाएगा। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, जिसमें कल कलाकार इंदिरा शर्मा और सखियों के गाए हुए लोकगीत आप सुनेंगे। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। 9:15 से हमारे श्रोता सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। 11:05 पर सभा समाप्त होगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

दो रास्ते, इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, जिसे स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने। गीत रचना थी आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में यह गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी चमत्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, जहां से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने।

जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। स्वर था कुमार सानू और लता मंगेशकर का, गीत रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत से सवारा था जतिन ललित ने।

0: आनंद, इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, जिसे स्वर दिया था मुकेश ने, गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत था सलील चौधरी का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया, सत्ता को सेवा का माध्यम बताया। RBI ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए GDP वृद्धि अनुमान 7.1% बताया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 210 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट आवंटित किया। और प्रदेश के छोटे बड़े कुल 693 बांधों में क्षमता का लगभग 62% पानी उपलब्ध, पिछले साल के मुकाबले जल भंडारण 29% कम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता को सेवा का माध्यम बताया है। वे आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। जयपुर के मानसरोवर स्थित VT रोड मैदान में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश में बीते एक दशक में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। श्री मोदी जन विश्वास और गारंटी का पर्याय बन चुके हैं।
3: सेवा समर्पण और सुशासन के 25 वर्ष है। 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने राजनीति की बर्बादी को बदलते हुए सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। आज मोदी जी का नाम करोड़ों देशवासियों के लिए संकल्प की सिद्धि और गारंटी का पर्याय बन चुका है। और आप देखेंगे उनके कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन विकास और जन कल्याण के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का ये अभियान है।
1: श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शासन सचिवालय में विशेष सत्र रखा गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि अधिकारियों और कार्मिकों में सेवा उन्मुख सोच को मजबूत करने और संवेदनशील

शासन प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू करने के विचार को बढ़ावा देने के लिए ये सत्र रखा गया। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अलवर, डूंगरपुर, झुंझुनू, भरतपुर, पाली, बारा और चूरू जिलों में सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का आयोजन कल से नई दिल्ली में होने जा रहा है। यशोभूमि में होने वाले 4 दिन के इस कार्यक्रम में दूरसंचार

0: किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का आयोजन कल से नई दिल्ली में होने जा रहा है। यशोभूमि में होने वाले 4 दिन के इस कार्यक्रम में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही वैश्विक सहयोग और निवेश तथा ज्ञान के आदान प्रदान के लिए ये आयोजन एक साझा मंच का काम करेगा। इस दौरान अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर जोर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए करीब 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाया गया है। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में 0.25% की बढ़ोतरी कर इसे 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-2024 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रेपो रेट वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक पूंजी उपलब्ध करवाता है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। शीर्ष बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 5.2% किया है। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। इनमें मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में CISC और सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का दायित्व भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर मार्शल दीक्षित एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। उन्हें विमान उड़ाने का 3,500 से अधिक घंटों का अनुभव है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 210 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। 41 जिलों में चुनावी व्यवस्थाओं के लिए ये राशि जारी की गई है। इसमें मतदान दलों से लेकर EVM, वाहन और वीडियोग्राफी सहित अन्य खर्च शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित मदों में ही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने पर 1 माह के भीतर खर्च का पूरा विवरण आयोग को भेजना होगा। इस बीच आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छाया, पीने के पानी और पर्याप्त रोशनी का इंतजाम अनिवार्य होगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर अस्थायी रैंप बनाने और प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता करने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कल चुनाव की लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्यों और पहले के पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में देश की तीनों सेनाओं के समन्वय से सीमा पार आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और सैन्य हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई इस जवाबी कार्रवाई ने आतंक के विरुद्ध नया मानदंड स्थापित किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में आए बदलाव को न्यू नॉर्मल अगेंस्ट टेरर करार दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सामरिक संयम और रक्षात्मक नीति से हटकर आक्रामक तथा निर्णायक जवाब का नया मानदंड स्थापित करती है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: निर्णायक जवाबी कार्रवाई, यानी भारत पर होने वाले किसी भी आतंकी हमले का अब

0: करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरा, परमाणु ब्लैकमेल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरा, आतंक के आकाओं और उनके संरक्षकों में अब कोई अंतर नहीं होगा, यानी भारत अब आतंकवादी नेताओं और उन्हें पनाह देने वाली सरकारों में कोई फर्क नहीं करेगा। देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार इसी विजन का हिस्सा है। साथ ही बीते 12 सालों में देश के भीतरी इलाकों में आतंकवादी हमलों में आई कमी देश की बेहतर निवारक क्षमताओं और मजबूत सुरक्षा समन्वय को दर्शाती है। न्यूज डेस्क से सालेहा गाजी।
1: प्रदेश में अगले सप्ताह मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 11 और 12 अक्टूबर के आसपास सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही रात के तापमान में भी 2-3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने इस बदलाव के साथ ही दिन के तापमान में भी कमी की संभावना जताई है। इस बीच बीते 24 घंटों में प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। पिलानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार मापा गया, वहीं सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर और शेखावाटी सहित कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश का असर राज्य के बांधों पर भी दिखाई दे रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े कुल 693 बांधों में अपनी क्षमता का लगभग 62% पानी उपलब्ध है। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 90% से अधिक था, यानी जल भंडारण में करीब 29% की गिरावट दर्ज की गई है। 99 बांध ही पूरी क्षमता तक भर पाए हैं, वहीं 379 आंशिक रूप से भरे हैं और 215 बांध पूरी तरह खाली है। कोटा संभाग में सबसे अधिक 77% जल भंडारण है। जोधपुर क्षेत्र के बांधों में केवल 16% पानी ही भरा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया, सत्ता को सेवा का माध्यम बताया। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% बताया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 210 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट आवंटित किया। और प्रदेश के छोटे बड़े कुल 693 बांधों में क्षमता का लगभग 62% पानी उपलब्ध, पिछले साल के मुकाबले जल भंडारण 29% कम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनावों की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर रोक रहेगी। जिले के 20 पंचायत समितियों की 590 ग्राम पंचायतों में चुनाव 3 चरणों में होंगे। जिला परिषद और पंचायत सदस्यों के लिए मतदान 22 और 28 अक्टूबर तथा 3 नवंबर को होगा। वहीं पंच और सरपंच पद के लिए 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जिले में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी के पारस सिंघवी उदयपुर नगर निगम के महापौर बने हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूनम कंवर को 55 वोट से हराया है। उप महापौर पद पर दिनेश भट्ट का निर्वाचन हुआ है, वे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं फतेहनगर नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ममता चपलोत चेयरमैन चुनी गई हैं। वल्लभ नगर में भाजपा और मावली तथा कानौड़ में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं। गौरतलब है कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए थे। विश्व पर्यटन दिवस पर जिले भर में विविध आयोजन हुए। जिले के सभी संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। लोक कला से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। 3 दिन के कार्यक्रमों में कई तरह की प्रतियोगिताएं और गतिविधियां रखी गईं। इस दौरान पारंपरिक मेहंदी कला को विशेष स्थान दिया गया। प्रतियोगिता में विजेता मेहंदी कलाकारों को पुरस्कार

0: कर दिए गए। जिले में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक अवैध शराब बनाने, उसका भंडारण करने और बिक्री पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कई जगह दबिश देकर जब्ती की कार्रवाई की गई। विश्व हृदय दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही समय रहते हृदय की जांच करवाने के लिए समझाया गया। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया में पशुओं में होने वाले हृदय रोगों पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पशुपालकों को बताया गया कि पशुओं के हृदय का कैसे ध्यान रखा जाए। इससे पहले महाविद्यालय में पशु चिकित्सा प्रसार सोसाइटी का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से आए 200 वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और शोधार्थी शामिल हुए। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले में पूरी धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। शहर के बोहरा गणेश जी, पाला गणेश जी और जाड़ा गणेश जी सहित लगभग एक दर्जन से अधिक मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर से शहर के प्रमुख बाजारों में गणपति स्थापना की गई। अनंत चतुर्दशी तक रोजाना सेवा पूजा के साथ विभिन्न श्रृंगार किए गए और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणेशोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के साथ हुआ। इस अवसर पर जगह जगह स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जल झूलनी एकादशी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों से ठाकुर जी को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। नयाखेड़ा स्थित राजकीय अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक हासिल किए हैं। 70वीं जिला स्तरीय अंतर विद्यालयी कुश्ती खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपना दमखम दिखाते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं जिले के कुराबड़ ब्लॉक की शिशवी ग्राम पंचायत के जनजाति बहुल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओंकार की छात्रा लक्ष्मी मीणा का चयन 70वीं राज्य स्तरीय इंटर स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये प्रतियोगिता झुंझुनू में आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बीते दिनों पीड़ित प्रतिकर योजना की बैठक आयोजित की गई। जिला और सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एडीजे राहुल चौधरी ने बताया कि इस दौरान योजना के तहत 10 प्रकरण निस्तारित किए गए। बैठक में पीड़ित और उनके आश्रितों को 34,25,000 रुपए के पीड़ित प्रतिकर अवार्ड पारित किए गए। इसी के साथ उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा ने संबोधित कीनी, सत्ता ने सेवा रो जरियो बतायो। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट 25 आधार अंकानी बढ़ोतरी सागे 5.5% कीनी, चालू माली साल सारू जीडीपी माए 7.1% बढ़ोतरी रो अनुमान लगायो। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश माए फे वनवाड़ा पंचायत चुनाव सारू 210,35,00,000 रुपया रो बजट आवंटित कीनो, और प्रदेश रा कुल 693 बंधा माए बूतारो करीब 62% पानी मौजूद, लारला साल रे मुकाबले 29% कम। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता न सेवा रो जरियो बतायो है। वे आज नई दिल्ली माए राखी जी विकसित भारत संकल्प सभा माए बोल रहा हा। श्री मोदी कहो कि जनता रो भरोसो और भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ताओं रो समर्पण वहां सारू सबू मोटी ताकत रहा। प्रधानमंत्री कहो कि भारत री अब बढ़ती ताकत और चुनौतियां रो सामो करण रा बूता सारू पूरी दुनिया माए चर्चा है। वह कहो कि देश री मौजूदा सरकार री नीति जनता री समस्यावां आगीकरण री है।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है,

0: तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा राज रा मुखिया रा तौर 25 साल पूरा भवन रा मौके प्रदेश माए नैरी नैरी ठोणा सेवा ज्योति यात्रा निकाली ची। जयपुर माए राखी जा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के श्री मोदी री अगुवाई माए देश माए लाडला 10 बरसा माए मोटा बदलाव नजर आया।
2: सेवा समर्पण और सुशासन के 25 वर्ष है। 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने राजनीति की बर्बाद को बदलते हुए सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। आज मोदी जी का नाम करोड़ों देशवासियों के लिए संकल्प की सिद्धि और गारंटी का पर्याय बन चुका है और आप देखेंगे उनके कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन विकास और जन कल्याण के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का ये अभियान है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू जन सेवा रा 25 साल पूरा विवरण रा सिलसिला माए जयपुर रा शासन सचिवालय माए खास सत्र रखी चियो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो के अहलकारा और कर्मचारियां माए सेवा री सोच ने मजबूत बनावण और संवेदनशील शासन प्रणाली असरदार तरीकाउ लागू करण रा विचार ने बढ़ावो देवण सारू ओ सत्र रखी चियो। अलवर, डूंगरपुर, झुंझुनू, भरतपुर, पाली और चूरू समेत न्यारा न्यारा जिलाओं सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा रा कार्यक्रम राखण रा समाचार मिलिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस रो 10वां संस्करण काल नई दिल्ली माए शुरू हैला। 4 दिन रा ई कार्यक्रम माए दूर संचार, डिजिटल जुड़ाव और तकनीकी नवाचार रा हलका माए भारत री बरकत रो दर्शाव करियो जावेला। इसा गई आवता जमाना रा डिजिटल बुनियादी ढांचा, तकनीक आधारित माली विकास, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल तंत्र विकसित करण और डिजिटल पहुंच बढ़ावण रे बारे में चर्चा फैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो दूर संचार विभाग और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन री ओर राखी जा रही ई मीटिंग रो उद्घाटन करण रो कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI रेपो रेट माए 25 आधार अंकां री बढ़ोतरी करण रो फैसलो कीनो है। ई पाछे अब रेपो रेट 5.25 उबधर 5.5% फे जावेला। RBI रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मुंबई माए द्विमासिक मौद्रिक नीति रो ऐलान करता थका आ जानकारी टीनी। वे बतायो कि दुनिया री अनिश्चितता बीच बढ़ती महंगाई माथे काबू करण सारू करीब 4 साल पाछे रेपो रेट माए 25 आधार अंकां ने बढ़ोतरी करी ची है। इनु पहली फरवरी 2023 माए रेपो रेट माए 0.25% री बढ़ोतरी करर 6.5% तय करी ची ही। साल 2023-24 माए रेपो रेट माए कोई बदलाव नहीं करी चियो, हालांकि साल 2025 इन माए कटौती शुरू करी ची ही। रेपो रेट ब्याज री वा दर है जिन्हों रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकां ने कम बगत सारू पूंजी मुहैया करावे है। भारतीय रिजर्व बैंक चालू माली साल सारू सकल घरेलू उत्पाद GDP माए 7.1% बढ़ोतरी रो अनुमान लगायो। ए बीच महंगाई माए बढ़ोतरी री खुदरा दर अगस्त महीना माए बढ़ 4.82% रही, जदकर लाडला महीना 4.45% ही। वायु सेना रा नुआ बनाई जिया प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर ने कामकाज संभालेला। वह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह री ठौर लेवेला। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना माए के खास ओहदा माथे सेवा दीनी है। आमाए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रा मुख्यालय माए CISC और सेंट्रल एयर कमांड रा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रो दायित्व शामिल है। रक्षा मंत्रालय रे मुजब एयर मार्शल दीक्षित एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। माने जहाज उड़ावन रो 3,300 घंटा रो अनुभव है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो।

0: राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश माई फेवनवाला पंचायत चुनाव सारू 210 करोड़ 35 लाख रुपया रो बजट रख्यो है। प्रदेश रा 41 जिला माए पोलिंग पार्टियां उलेर ईवीएम गाड़ियां और वीडियोग्राफी समेत न्यारा न्यारा चुनावी खर्च सारू आ रकम जारी करी ची है। जिला निर्वाचन अधिकारियां ने चुनाव रो काम पूरो फेवन रा एक महीना री मियाद माए खर्चा रो पूरो ब्यौरो देवन सारू कही चियो है। इन बीचे आयोग पंचायत चुनाव रे दौरान मतदान केंद्र माथ छाया पीवन रा पानी और जरूरी रोशनी समेत न्यारा न्यारा इंतजाम तय करन रा हुकम दीना है। मतदान केंद्र माथ अस्थाई रैंप बनावन और इलाज रा किट मुहैया करावन सारू ही कही चियो है। इन बीचे जिला निर्वाचन अधिकारी काल चुनाव री लोक सूचना जारी करेला। इस आगे जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव रा पहला दौर सारू पर्चा भरन रो काम सारू है जावेला। नाम पाना समारा 11 बजाऊं दोपहर पाछे 3 बजा ताई दाखिल करया जा सकेला। राज्य माए वोट देवन रा पात्र और नुआ मतदाताओं रा नाम वोटर लिस्टा माए मांडन सारू खास अभियान चलायो जा रियो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR रे दौरान मतदाता सूची माए शामिल हुए वनु रह गया पात्र लोगा और 18 साल री उम्र पूरी कर चुकिया पात्र नौजवाना रा नाम वोटर लिस्टा माए जोड़िया जा रहा है। वे बतायो कि लाडला 7 दिन माए 57,032 अर्जियां मिली। श्री महाजन वोट देवन रा पात्र लोगाओं नाम मतदाता सूची माए जुड़ावन और दूजा पात्र नौजवाना और जनता ने एड़ो करण री सीख देवन री अरज की नी है। अरब मौसम प्रदेश रा बीकानेर संभाग और शेखावाटी हल्का माए 11-12 अक्टूबर रा आर सारे बादला मंडिया रहवन और गरज सागे हल्की बारिश रा आसार है। ईसा गई रात्रि बगत पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरण री संभावना है। मौसम विभाग आवता दिना दिन माई पारो उतरण रा आसार जताया है। ये बीच लाडला 24 घंटा माए प्रदेश रा तापमान माए उतार चढ़ाव निजर आयो। पिलानी माए ऊंचो ऊंचो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो, जबकि सिरोही भीलवाड़ा उदयपुर और शेखावाटी हल्का समेत कई ठोणा कम ते कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे रहो। इणु सवारे और रात्रि बगत हल्की सर्दी महसूस वेवन लगी। ई साल चौमासा माए सामान्य कम बिरखा वेवन रो असर राज्य रा बंधा माथई नजर आ रियो है। जल संसाधन विभाग कान्यो मिली जानकारी रे मुजब राज्य रा कुल 693 बंधा माए बूतारो 62% पानी है। लाडला साल आम बंधा माए 90% उम्बत्तो पानी भरियो हो। ई साल 99 बंधा पूरा भर सक्या, 379 थोड़ा घना भरिया है, जबकि 215 बंधा रीता रह गया। कोटा संभाग रा बंधा माए सब उम्बत्तो 77% पानी भरियोड़ो है, जबकि जोधपुर हल्का रा बंधा माए महज 16% पानी भरियो है। पहलगाम आतंकी हमला रा जवाब माए फौज कान्यो ऑपरेशन सिंदूर रा तेत सीमा पार आतंकी शिविरा माथे सटीक हवाई और फौजी हमला करी चिया हा। आ जवाबी कार्रवाई आतंक रे खिलाफ नुओ मानदंड बनायो। आतंकवाद रे खिलाफ भारत री नीति माए आया ई बदलाव ने न्यू नॉर्मल अगेंस्ट टेरर करार दियो चियो हो। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सामरिक संयम और रक्षात्मक नीति से हटकर आक्रामक तथा निर्णायक जवाब का नया मानदंड स्थापित करती है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: निर्णायक जवाबी कार्रवाई, यानी भारत पर होने वाले किसी भी आतंकी हमले का अब करारा जवाब दिया जाएगा; दूसरा, परमाणु ब्लैकमेल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा; और तीसरा, आतंक के आकाओं और उनके संरक्षकों में अब कोई अंतर नहीं होगा, यानी भारत अब आतंकवादी नेताओं और उन्हें पनाह देने वाली सरकारों में कोई फर्क नहीं करेगा। देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार इसी विजन का हिस्सा है। साथ ही बीते 12 सालों में देश के भीतरी इलाकों में आतंकवादी हमलों में आई कमी देश की बेहतर निवारक क्षमताओं और मजबूत सुरक्षा समन्वय को दर्शाती है। न्यूज डेस्क से सालेहा गाजी।
0: आखिर माए खास समाचार एकर फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली माए विकसित भारत संकल्प सभा ने संबोधित की।

0: नीट सत्ता ने सेवारो जरियो बतायो। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट 25 आधार अंका ने बढ़ोतरी सागे 5.5% की नी। चालू माली साल सारू जीडीपी माए 7.1% बढ़ोतरी रो अनुमान लगायो। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश माए फेवनवाड़ा पंचायत चुनाव सारू 210.35 करोड़ रुपया रो बजट आवंटित कीनो। और प्रदेश रा कुल 693 बंधा माए बूतारो करीब 62% पानी मौजूद, लारला साल रे मुकाबले 29% कम। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुन वाला सभी किसान भाई बहनों को विश्राम भाई के घने घने राम राम साहब। किसान भाइयों, देखिए आज ग्राम भारती की चौपाल है या मैं जो चर्चा का विषय है गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों का उपयोग मुख्य रूप से भोजन में प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी इनकी पूर्ति करवा के लिए किया जाता है। गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली की खेती ज़्यादातर जगह पर करी जावे। तो ये वैसे बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा इस तरह की सब्जियां किसान भाई हैं जो लगाते हैं, लेकिन अब तो आम तौर पर किसान भाई हैं जो अपनी आमदनी अच्छी लेवा के लिए या इस तरह से कहें भाई अपने आर्थिक स्थिति सुधारवा के लिए सब्जियों की खेती में गोभी वर्गीय सब्जियों का ज़्यादातर योगदान रखते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई करवा से पहले अपना किसान भाई है वो देख लें कि भाई कौन कौन सी जो अच्छी किस्में हैं उनका हम चुनाव करके और उनकी बुआई करें तो ज़्यादा मुनाफा हमको मिल सकता है। तो किसान भाइयों देखिए, फूल गोभी की बात करें तो इसमें लेटमैन है, पूसा स्नोबाल है, स्नो क्राउन है, पंत शुभ्रा है, पूसा दीपाली है। बीज दर की बात करें तो देखिए 15 से और 16 ग्राम प्रति नाली के हिसाब से बुआई करें, और जब रोपण की बात करें तो 50x50 यानी कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हर पौधा लगाएं। पौधों की जो संख्या की बात करें तो नालियों में पौधा 800 एक नाली में होने चाहिए करीब। इसी तरह पत्ता गोभी की बात करें तो अच्छी किस्मों में पूसा गेती है, पूसा मुक्ता है, T621 है, वरुण है, CH21 है, रिया बहार, ब्लू डायमंड और मित्रा, ये मुख्य किस्में हैं। इनकी बीज दर की अपन बात करें तो 10-12 ग्राम प्रति नाली के हिसाब से होना चाहिए, और नाली में जो पौधे हैं उनकी संख्या की बात करें तो 990 लगभग पौधे रखें। और पौधे लगाने की जो अपन दूरी की बात करें तो 45 सेंटीमीटर प्रति पौधे की दूरी लगभग रखें। तो किसान भाइयों देखिए, ये हुई बात किस्मों की, और अब बात करते हैं भूमि में खेत की तैयारी किस तरह से करें। गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए लगभग सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है। खेती की जो अच्छी प्रकार की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें तथा खरपतवार मुक्त कर लें, और पौध रोपाई के समय खेत को समतल बनाएं तथा क्यारियां बनाते समय जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। खाद और उर्वरकों का अपन बात करें तो फसल की

की अच्छी उपज प्राप्त करवा के लिए 5-6 कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय प्रति नाली की दर से मिला लें। इसके अतिरिक्त 3.0 किलोग्राम नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, अपन यूरिया बोलते हैं जिसको, और 1 ग्राम फास्फोरस व 1 ग्राम पोटास की आवश्यकता जो नर्सरी तैयार करेंगे उस समय पड़ती है। किसान भाइयों, नर्सरी प्रबंधन के लिए स्वस्थ पौधे समूची फसल का देखो आधार मानते हैं। नर्सरी के लिए चयनित भूमि का शोधन के लिए मृदा सौरीकरण करें। इसके अलावा कार्बन डाइजिम 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की क्षेत्र की दर से मृदा में डेंचिंग करें। नर्सरी की बुआई से 15 दिन पहले आवश्यकता अनुसार कंपोस्ट खाद को बारीक करके मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें। बीज बुआई से पहले पूरी तरह से जो पहले देने वाला है यूरिया उसको 100 ग्राम, डीएपी 100 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 70 ग्राम प्रति डेढ़ से और 1 मीटर की जो क्यारी अपन बनाते हैं नर्सरी के लिए उसमें मिला दें और अच्छी तरह से जो बीज है उसकी हम बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इनमें कई तरह के कीट लगते हैं, तो कीटों में सबसे पहला बात करें तो पात गोभी का जो महू कीट है वो लगता है। ये सरसों कुल के पौधों का मुख्य क्षतिकारक कीट है। यह हरे पीले रंग का है और जूके आकार का कीट होता है जिसमें चुभने एवं चूसने वाले मुखांग होते हैं। वयस्क कीट पंखदार और पंखहीन दोनों प्रकार के होते हैं। यह कीट सफ़ेद मोमी चूर्ण से ढका हुआ रहता है। इस कीट का शिशु एक अवयस्क दोनों की अवस्थाओं में और वयस्क भी होता है। ये अपने चुभाने एवं चूसने वाले मुखांगों की सहायता से पत्तियों का रस चूस करके और पत्ता गोभी के ऊपर हजारों की संख्या में ये रस चूसने वाले दिखाई देते हैं। इस कीट द्वारा रस चूसने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सिरसों का विकास रुक जाता है। तो इसके अलावा और कई तरह के कीट भी लगते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं जैसे ही अपने पौध तैयार होती है उस समय ये कीट लगते हैं। इनमें मुख्य अपन बात करें तो पेंटेट बग है वो भी लगती है। ये कीट वैसे बात करें तो वयस्क कीट के आकार में छोटा होता है, लाल काले चमकदार रंग का होता है। मादा कीट लगभग 250 अंडे भूमि के अंदर देती है। इस कीट को की जो शिशु है और वयस्क ये दोनों ही बड़े भारी नुकसान से हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी की तितली, किसान भाइयों ये कीट फूल गोभी पत्ता गोभी के अतिरिक्त मूली शलजम और सरसों कुल के अन्य जो फसलें उनको भी नुकसान पहुंचाता है। वयस्क कीट सफ़ेद रंग की तितली होती है जिसके अगले पंख पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग के होते हैं जिनके ऊपर दो काले धब्बे पाए जाते हैं। सुंडी हल्के पीले रंग की होती है जो बाद में हरे पीले रंग की हो जाती है। शरीर पर हल्के बाल पाए जाते हैं तथा सिर काले रंग का होता है। इस कीट की सुंडी वाला अवस्था क्षति करने वाला ज़्यादा होता है। वयस्क तितली अति क्षति बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। सुंडियां अपने काटने एवं चखने वाले मुखांगों की सहायता से पौधों की पत्तियों को काट करके खा जाती हैं और इस तरह से जो गोभी वर्गीय नर्सरी के पौधे हैं उनको वो नष्ट कर देती है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा इसमें कई तरह के रोग भी लग जाते हैं, जैसे कि फफूंद जनित रोग, ये आर्द्रपतन रोग होता है। पौधशाला में लगने वाले प्रमुख बीज एवं मृदा जनित रोग है जो पिथियन म्यूजेरियम राइजोबैक्टीरियम प्रजाति के फफूंदियों द्वारा होता है। इस रोग का प्रकोप नर्सरी में आवश्यकता से अधिक नमी और मृदा में उचित वायु संचार न होने के कारण बढ़ता जाता है। तो इसके अलावा जीवाणु जनित रोग होते हैं, जैसे काला विगलन रोग, ये फूल गोभी और बंद गोभी का प्रमुख जीवाणु जनित रोग होता है जो कि जैंथोमोनास उपजाति का होता है। ये जीवाणु बीज की सतह या अंदर अथवा रोगी पौधों के अवशेषों में सरसों कुल के पौधों का उत्तरजीवी बना रहता है। इस रोग से प्रभावित पत्तियां पीली होकर के मुरझाने लग जाती हैं जो अंग्रेजी के वी आकार की बनी हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह से एक और रोग और लगता है, विषाणु जनित रोग, जिसको फूल गोभी का मोजेक भी कहते हैं। ये विषाणु जनित रोग हो जाता है जो माहू कीट की विभिन्न प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण पौधों की पत्तियों पर चित्तीदार मोजेक के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कई तरह के कीट लगते हैं और कई तरह के रोग गोभी वर्गीय सब्जियों में लगते हैं। तो किसान भाइयों, इनकी रोकथाम करके ही हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो बातचीत बहुत

0: किसान भाइयों ने सुनी होगी, निश्चित रूप से लाभ लेंगे। तो किसान भाइयों देखिए, अब आपको सुनाते हैं कुछ जरूरी संदेश, तो भाइयों सुनो।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: किसान भाइयों, अब आपको सुनवाते हैं रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। श्री सुरेंद्र पाल यादव, कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं प्रभारी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अलवर, तो इनसे सुनते हैं एक भेंटवार्ता। तो बहुत अच्छी भेंटवार्ता है, किसान भाई सुने।
5: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र पाल यादव, जो कि कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं प्रभारी हैं, एग्री क्लिनिक एवं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अलवर में कार्यरत हैं। उनसे करेंगे बातचीत और आपको दिलवाएंगे जानकारी। और आज हमने बातचीत का विषय रखा है रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी, भूमि उपचार एवं मृदा जांच एवं अन्य कृषि शस्य क्रियाएं। तो सुरेंद्र पाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
6: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
5: सुरेंद्र जी, अब हम आपको सबसे पहले किसान भाइयों को जानकारी दिलवाना चाहें कि देखो, किसान भाइयों ने अब इस समय अपने खरीफ की जो फसलें हैं वो लगभग खेतों से बाहर निकाल दी है, कपास के अलावा लगभग कुछ ग्वार जिन भाइयों ने बोए हैं तो वो बच रहे हैं। बाकी अब जो रबी फसलों के लिए किसान भाई हैं, उनको बताएं कि खेत की वो तैयारी किस प्रकार से करें।
6: बिल्कुल किसान भाइयों राम राम। जैसा कि विदित है, सभी किसान भाई अपने खेत में व्यस्त है, खरीफ की जो भी फसलें हैं उनको अपने जल्दी से जल्दी अपने घर में लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। बाजरा लगभग किसान भाइयों ने निकाल लिया है, कुछ निकाल में लग रहे हैं, ग्वार बच रहा है, थोड़ा कपास बच रहा है। इसके बाद किसान भाई अब लग जाएगा रबी फसलों की तैयारी के लिए, जो कि हमारे किसान के लिए रबी फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रबी फसलों के लिए किसान भाई जैसे खरीफ से फ्री होते हैं तो अपने खेत की तैयारी पर मुख्य ध्यान रखना है। एक तो किसान भाई जो अभी जिसमें फसल खड़ी थी, अगर भदवाड़ है तो वो तो सही है, लेकिन जिसमें फसल खड़ी थी, बाजरा था या ग्वार था या ज्वार थी, उस किसान भाई उसमें दो तीन जुताई अच्छी तरह से कर ले। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है इसमें नमी का। किसान भाइयों, नमी अगर प्रॉपर मात्रा में होगी तो ही अपना बीज अंकुरित होगा। अगर कम नमी में आपने बीज डाल दिया तो बीज कई बार निकलेगा नहीं। तो किसान भाई ये ध्यान रखे, ऊपर की तीन चार आंगन की जमीन तो आपको सूखी मिलेगी, लेकिन नीचे की जो जमीन है उसमें सही मात्रा में नमी होनी चाहिए। और इसका पैमाना यह है किसान भाइयों, उसमें आप लड्डू बांध के देख लें मिट्टी का, तो अगर लड्डू बनता है
5: जी,
6: तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन में जो नमी है वो प्रॉपर मात्रा में है। अगर किसी किसान भाइयों में जमीन में नमी नहीं है तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा वो अपना पड़ेवा करके अपने किसान भाई खेत की तैयारी करें।
5: तो अब बात तैयारी की हो गई, अब हम जानकारी दिलवाना चाहें कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, बुआई के समय किस तरह से खाद और उर्वरकों का प्रबंधन करें, यानी कि खाद और उर्वरकों के बारे में किसान भाइयों को बताएं।
6: बिल्कुल किसान भाइयों, जमीन के साथ साथ एक चीज और रह जाती है। आजकल हमारी जमीन में जो भी भूमि जनित है, मृदा जनित जो कीट है या बीमारियां हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाई अपनी जमीनों की जब तैयारी करें तो एक पाउडर आता है चूर्ण, क्यूनाल फोस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जमीन में रख के अपनी खेत की तैयारी करें, ताकि जो भी कीड़े हैं या दीमक है उसका प्रकोप नहीं रहेगा।
5: यानी कि यह भूमि उपचार के लिए आवश्यक है।
6: बिल्कुल, बहुत जरूरी है आज के अपने समय में, क्योंकि जब फसल खड़ी होगी उस समय अगर कोई रोग या बीमारी आ जाती तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। फसल में वो बीमारी है, रोग है, वो रुक भी नहीं सकता, उसको कम किया जा सकता। तो अपने जैसे भी जो भूमि जनित जो कीड़े मकोड़े हैं, तो उसके लिए अपना क्यूनाल फोस, जैसे मैंने बताया चूर्ण है, ये 1.5% का आता है,

0: ये 25 किलो एक हेक्टेयर में किसान वो रख के खेत की तैयारी करें। दूसरी जो समस्या आती है वो आती है जलगड़न की, या झुलसा या गलन। तो इसके लिए किसान भाइयों एक रामबाण है, ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद आती है, तो जब बुआई करें उससे कम से कम 2 हफ्ता पहले, अब सही समय है, तो एक पैकेट ट्राइकोडर्मा का मित्र फफूंद का ले, पाउडर फॉर्म आता है, और लगभग 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लें।
1: अच्छा जी,
0: तो और गोबर की सड़ी हुई खाद में उसको वो रख दें, और ये 10 दिन 12 दिन इसको पटके रखें छाया में, और इसको उल्टा पलटा करते रहें। और इसमें ये ध्यान रखना किसान भाई, इसमें नमी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, अगर नमी नहीं होगी तो वो जो जीव है ट्राइकोडर्मा वो मर जाएंगे। तो ये भी जब आप 100 किलो गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर छिड़क के 10-12 दिन घर में रखेंगे, फिर खेत की तैयारी करते हैं उस समय आप उसको खेत में रख करके और आखिरी जुताई से पहले ये काम कर सकते हैं।
1: अच्छा जी, अब भूमि उपचार के बाद हम किसान भाई बड़ी समस्या में है, अब देख भी रहे हैं इस समय खाद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। किसान भाई बोल रहे हैं भाई हमें डीएपी नहीं मिल पा रहा, तो डीएपी के बारे में किसान भाइयों को क्या जानकारी देना चाहें, और डीएपी नहीं मिलने पर हमारे किसान भाइयों के लिए कौन से विकल्प मौजूद हैं और उनसे क्या फायदे हैं, उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: बिल्कुल, किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो किसान भाई डीएपी डीएपी करना छोड़ दें, क्योंकि किसान भाइयों जो हमारा डीएपी जो खाद है, उर्वरक है, ये मुख्य रूप से हमारे को फास्फोरस और नाइट्रोजन की पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसमें 46% तो फास्फोरस होता है और 18% इसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन तो किसान भाई यूरिया से भी कर लेता है पूर्ति
1: जी, बिल्कुल
0: यूरिया तो डालता ही है। तो अब हम बात ये आती है कि केवल हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी काम ले रहे हैं। ये डीएपी खाद ही हमारा नहीं है, बाहर से आता है, सरकार को बहुत महंगा पड़ता है। जो जो किसान भाई को 1350-1400 रुपए में जो कट्टा आता है, ये सरकार को लगभग 4000 रुपए में खरीदना पड़ता है। इसमें मोटी सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है, और इसका उद्देश्य हमारा है फसल में फास्फोरस देना। तो हमारे यहीं का निर्मित हमारा खाद जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद है, ये किसान भाई प्रयोग में करे। इसमें एक अंतर ये है कि उसमें 46% फास्फोरस होता है
1: जी,
0: और इसमें होता है अपना 16% फास्फोरस
1: जी, बिल्कुल।
0: तो एक कट्टा डीएपी का हटाएं आप, और आप 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के लेंगे, तो आर्थिक रूप से भी आपको सस्ता पड़ेगा, लगभग 350-400 रुपए का एक कट्टा आएगा, तो 3 कट्टे भी तो 1200 रुपए का हो गए। साथ में ये जो हमारा खाद है सिंगल सुपर फास्फेट खाद, ये साथ में हमें सल्फर की भी पूर्ति करता है और कैल्शियम भी देता है फसलों को। और जो हमारी तिलहनी फसल मुख्य रूप से, अब हम सरसों बोने जा रहे हैं, तो हमारे सरसों में जो है हम 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के लेकर के 1 कट्टा डीएपी का हम हटा सकते हैं। तो किसान भाई बिल्कुल भी डीएपी के पीछे ना दौड़े,
1: यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा अगर हमारे किसान भाई सरसों की बुआई करेंगे तो उसमें फास्फोरस के अलावा सल्फर मिल रही है, कैल्शियम मिल रहा है, और पोषक तत्व तो बोरोन वगैरह इसमें
0: बिल्कुल
1: मिलते हैं, और किसान भाइयों को वो सस्ता भी
0: पड़ता है। बिल्कुल,
1: तो कई बार हम देखते हैं किसान भाइयों चाहते हैं कि भाई हम डीएपी डालेंगे या यूरिया डालेंगे, अंधाधुंध उनका प्रयोग करते हैं, तो उनसे वो अच्छी पैदावार नहीं ले पाते। सरकार ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी विकल्प के रूप में चला रखे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या सुझाव है, किसान भाइयों के लिए क्या जानकारी देना चाहिए?
0: बिल्कुल, सरकार ने नैनो यूरिया नैनो डीएपी चला रखा, लेकिन मैं किसान भाई से निवेदन करूंगा, जो हमारा बेसल डोज होता है, शुरू का जो डोज होता है
1: जी,
0: वो तो हमारे को उर्वरक का देना ही पड़ेगा
1: जी।
0: बाकी बाद में जो उर्वरक देते हैं हम, उसके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं नैनो यूरिया नैनो डीएपी, लेकिन जो जमीन में जो डालना शुरू में, वो खाद तो हमें देना ही पड़ेगा, तभी उसका बढ़िया रेस्पॉन्स आएगा। अगर केवल हम नैनो यूरिया नैनो डीएपी पर रहेंगे तो हो सकता है हमारे को फसल को प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे।
1: तो यानी कि जो हम अगले जब हम छिड़काव करना चाहें, जब हम दूसरी बार जब कोई भी उर्वरक है
0: उनका यूरिया देना है,
1: यूरिया देना है,
0: तो यूरिया का आप कट्टे वाला यूरिया न दे करके आप नैनो का एक बोतल लेकर के उसका स्प्रे करते जाएं।
1: बिल्कुल, तो इससे हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा होगा, जमीन के बारे में कुछ फायदा है उसके बारे में थोड़ा सा?
0: बिल्कुल फायदा, एक तो आर्थिक रूप से फायदा होगा, आपको एक कट्टा ले जाना पड़ेगा, छोटी सी बोतल लेनी पड़ेगी, पैसे में भी सस्ती आएगी, आपकी जमीन है वो भी अच्छी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। एक तो जमीन वैसे हमारी सारी हो रही खराब हो रही, और ये सीधा फसल खाएगी, एक तो जड़ों से खाना, जड़ों से जब देते हैं हम जमीन में से लेती है, और एक सीधा आप स्प्रे करेंगे तो सीधा फसल को डायरेक्ट भोजन मिलेगा, तो इससे जमीन खराब भी नहीं होगी, पैसे की हमें

0: पड़ेगा।
1: बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाइया, आपने बताया कि जो डीएपी है उसके पीछे ज्यादा न भागें, और सिंगल सुपर फास्फेट का किसान भाई अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो हमारी दलहनी फसलें हैं,
0: फसलें
1: तिलहनी
0: और दलहनी
1: फसलें, उनमें काफी हद तक फायदा होगा। अब हम बात करना चाहें कि किसान भाई कई बार क्या है, ज्यादा देते हैं, तो इसके लिए जैसे अपने मिट्टी की जो जांच है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहें, तो किस तरह से वो जांच करवाएं और क्या फायदा होगा जांच करवाना, उसके बारे में बताएं।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, आप पर हम भोजन खाते हैं अपनी मर्जी से, और हम हमारी फसलों को भी हम अपनी मर्जी से खिलाते हैं, जो कि गलत है। उर्वरक जो भी खाद हम देते हैं फसल में, जमीन में, वो भी जमीन की मांग के अनुसार, जमीन की इच्छा के अनुसार, फसल की मांग के अनुसार होना चाहिए। और जमीन की मांग का पता लगेगा जब मिट्टी की जाँच होगी। तो इसके लिए किसान भाई बहुत बढ़िया समय है, उपयुक्त समय है। अपनी खरीफ की फसल आपने घर में ले ली, या कोई किसान भाई ला रहा है और आप खेत की जुताई कर रहे हैं, तो अब आप मिट्टी की जांच कराएं। प्रयोगशाला आपके अलवर में, महिला थाना, तेज मंडी में, इसमें मैं कार्यरत हूँ। आप अपने खेत में, जिस खेत में आप सरसों बो रहे हैं या जो बोएंगे, या गेहूं बोएंगे, चने बोएंगे, तो उसकी मिट्टी की जांच के उपरांत ही आप उर्वरक का प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक का प्रयोग होगा तो उस खेत में से आप 5-6 जगह से जगह चिन्हित करें। एक खेत है जैसे आपका 2 बीघे का, 3 बीघे का, तो उस खेत में से आप 5 जगह से मिट्टी निकालेंगे, एक बीच में और 4 कोणों में। कोणों का मतलब डोले के पास नहीं, खेत के भीतर की तरफ से
1: जी
0: 5 जगह से मिट्टी निकालेंगे, ऊपर की एक बिलान की मिट्टी, क्योंकि अपनी जितनी भी फसलें होती हैं वो इसी गहराई में अपने खुराक लेती हैं। हम खाद ओढ़ते हैं वो भी हम लगभग इसी गहराई में ओढ़ते हैं, तो हमें ये एक बिलान की ऊपर की मिट्टी जाँच करनी है। तो 5 जगह से एक एक बिलान की मिट्टी निकाल के और 5 जगह की मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लें। अब हमारे का सब जगह की मिट्टी आ गई, काली पीली हल्की भारी सब आ गई, और इसको मिला के इसमें से 500 ग्राम मिट्टी आप प्रयोगशाला में लेकर के किसी भी कार्य दिवस में आ सकते हैं 9:30 से 6 बजे तक। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, केवल 5 रुपये फीस लगती है। 7 दिन के अंदर अभी समय आपके पास, आप जैसे आज कोई सैंपल लाया है तो 7वें 5वें 7वें दिन आपको परिणाम मिल जाएगा। तो उसके जो मिट्टी की जांच से हमें जमीन की मांग का पता लग जाएगा, उसकी खुराक कितनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने मिट्टी की जांच करवा के और अपने जो फसल हैं उनके खाद और उर्वरकों का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से उनको काफी हद तक फायदा होगा। और अब हम किसान भाइयों को जानकारी दिलवाना चाहें कि जैसे अब बात आ रही है सरसों की बुआई होगी, तो उसके बाद जैसे चना है, जौ है, गेहूं है, तो उनका जो उपयुक्त समय है कब किसान भाई बुआई करें, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे भाइयों को बताएं।
0: देखो किसान भाई, अब सबसे पहले तो सरसों की बुआई करेगा
1: जी,
0: तो अभी हम देख रहे हैं तापमान दिन में बहुत ज्यादा है, अभी 2 दिन से थोड़ा सा कम हुआ है देख रहे हैं। तो किसान भाई एक तो ये ध्यान रखें अपनी जमीन में नमी का, और दूसरा अपने जो टेम्परेचर है लगभग 25 डिग्री के आसपास आ जाए। और मैं ये मानता हूँ 10 से 12 अक्टूबर के आसपास अगर कोई किसान भाई बुआई करता है सरसों की, तो ये सबसे उपयुक्त समय है। क्योंकि अभी मान लो कोई गर्मी पड़ रही है या खेत में नमी की कमी, ऊपर की तीन चार अंगली जमीन तो सूख चुकी है
1: बिल्कुल,
0: और किसान भाई ये सोच रहे बारिश खूब हुई है तो शायद काम चल जाएगा, लेकिन वो उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, तो जैसे बीज अंकुरित होगा वो वहीं मर जाएगा। तो ये 10 से 12 अक्टूबर के आसपास अगर बुआई करेगा तो बहुत बढ़िया उपयुक्त समय है
1: जी। अब हम एक बात जानकारी और दिलवाना चाहें कि बीजोपचार के बारे में, तो किसान भाइयों को बताएं कि बुआई से पहले जो बीजोपचार क्या है और उसका क्या महत्व है, क्यों करना जरूरी है, वो किसान भाइयों को बताएं।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, जैसे मनुष्य जीवन में टीकाकरण जरूरी है, उसी तरह हमारी फसलों में भी टीकाकरण, जिसको हम बीज उपचार कहते हैं। टीकाकरण का मतलब है कि जैसे मनुष्य में जब पैदा होता है तो उसमें खसरे का, पोलियो का, टीबी का, सारे टीके लगते हैं ताकि वो युवा अवस्था में आए तो वो सारी बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता बनी रहे। इसी तरह हमारी फसलें हैं, इसमें भी बीज उपचार जरूरी है। अगर पहले ही हम इसके रोकथाम कर लेंगे तो खड़ी फसल में कीड़े बीमारियां आने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। अगर इसको हम चूक गए तो खड़ी फसल में हमारे कीड़े भी लगेंगे, हमारी बीमारियां भी होंगी, और उसमें किसान भाई का बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होती, कम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम बीज उपचार कर लें, जो छोटा सा काम, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसका एक तरीका किसान भाई, जैसे हिंदी का शब्द फकीरा
1: जी
0: है और की आता है रा आता है, तो सबसे पहले किसान भाई जिसकी फसल का बीज ले रहा है, फै का मतलब होता है फफूंदी नाशक, जो भी गलन लगती है, झुलसा लगता है,

0: तने में लगे, पत्ते में लगे, फूल में लगे, जिस भी जिसको बीमारी कहते हैं, जो भूमि जनित भी कह सकते हैं उसको, तो उसके लिए हम सबसे पहले फफूंदी नाशक दवाई है उसका उपचार करें
1: जी।
0: फफूंदी नाशक में आप ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हो, आप इसमें बावस्टीन भी दवाई ले सकते हो। उसके बाद दूसरा जो शब्द आया इसमें कीप है, की का मतलब कीटनाशी
1: जी।
0: किसान भाइयों, ये जो कीटनाशी है ये हमारे कीड़े जितने भी लगते हैं इसके लिए है। कीड़ा ऊपर से आता है, तितली घूमती है, जहाँ भी बैठती है वहाँ अपना अंडा दे देती हैं और फसल में कीड़ा वो लटर वगैरह लग जाती है। तो इसके लिए जो भी कीटनाशी है, जो भी आपको नज़दीक खाद बीज विक्रेता मिल जाए, तो कीटनाशी दवाई का उसके साथ उपचारित करें।
1: तो कीटनाशी में वो कौन सी चीज लें?
0: कीटनाशी में एमिडा क्लोरपीड ले सकता है, क्लोरोपाइरिफॉस भी ले सकता है
1: जी।
0: और तीसरा आता है फै की रा, रा का मतलब कल्चर, राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर है, ये बैक्टीरिया होते हैं किसान भाई, ये हमारी जमीन में बहुत ज़्यादा होते थे पहले। जब से हमारी ज़मीनों में केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे हैं, ज़मीनों में जैविक कार्बन कम हो गया, तो इनकी प्रजातियां खत्म सी हो गई। तो हम इसके लिए जैसे अपना एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, केएमबी है, ये जो हमारी ज़मीनों में हम लंबे समय से जो उर्वरक दे रहे हैं और इसको जाकर जमीन में फिक्स हो जाता है, बहुत कम मात्रा में हमारी फसलें उसको ले पाती है। जमीन में पड़ा है लेकिन फसल के खाने लायक नहीं है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये उसको क्रियाशील करके बिना खाद दिए ही उसी खाद को क्रियाशील कर देती हैं। तो इस तरह किसान भाई बीज उपचार करें।
1: बिल्कुल। तो सुरेंद्र पाल जी, आपने हमारे जो किसान भाई हैं उनको रबी फसलों के लिए किस तरह से वो खेत की तैयारी करें, भूमि उपचार है, मिट्टी की जाँच है, उसके बारे में और बीज उपचार के बारे में किसान भाइयों को बहुत बढ़िया जानकारी दी और उम्मीद है किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ तो किसान भाई देखो, ये तो आपने सुनी भेंटवार्ता और अब आपको सुनवाए संदेश, तो भाइयों सुनो।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हाँ तो किसान भाई देखो, ये तो सुना आपने संदेश, और अब आपको जानकारी दे दें मूली की उन्नत खेती के बारे में। मूली सर्दी के मौसम की फसल है, लेकिन किसान भाइयों कुछ किस्में गर्मी में भी उगाई जा सकती हैं। उचित समय पर उचित किस्मों का चयन करके मूली की खेती वर्ष भर हम कर सकते हैं। मूली का अधिकतर उपयोग सब्जी या खाने तथा सलाद के रूप में किया जाता है। भूमि एवं जलवायु या के बारे में अपन बात करते हैं। मूली प्राय सभी प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन हल्की और भुरभुरी मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। किसान भाइयों, मूली के स्वाद, बनावट और आकार को अच्छा बनाने के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं किस्मों के बारे में। उन्नत किस्में पूसा चेतकी है, पूसा रश्मि है, जापानीज व्हाइट है, पूसा हिमानी है, हिल क्वीन है, रैपिड रेड व्हाइट है, अर्का निशांत है, ये अच्छी किस्म है। किसान भाई बुआई की अपन बात करते हैं तो देखो, बीज की बुआई मूली की ऊपर जैसे पैदावार है उसके ऊपर निर्भर करें, लेकिन बुआई खेत की मेड़ों पर ही करें। मेड़ से मेड़ की दूरी 10 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। किस्मों के अनुसार हम बुआई कर सकते हैं। अच्छी किस्मों के बारे में हम बात करें तो देखिए, पूसा रश्मि है जो कि सितंबर से नवंबर तक उगाई जा सके। जापानीज व्हाइट है जो अक्टूबर से और दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। इसका पूसा हिमानी है, इसकी हम मध्य दिसंबर से जनवरी तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज के बारे में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बुआई कर सकते हैं। खाद की अपन बात करें तो देखो किसान भाइयों, गोबर खाद 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उर्वरक 30 किलोग्राम नत्रजन, 58 किलोग्राम फास्फोरस और 87 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। नत्रजन और पोटास की आधी मात्रा फास्फोरस

पूरी मात्रा बुआई के समय देवे और जड़ बनते समय खेत में शेष 20 किलोग्राम नत्रजन और 43.5 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम दे सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों बाजार भाव की, तो आपको बता दें आज अलवर अनाज मंडी में चने के भाव 6800 से लेकर के 7200 रुपये प्रति क्विंटल रहे, गेहूं 2650 से लेकर के 2800 रुपये प्रति क्विंटल बिके, इसी तरह सरसों 7800 लेकर के 8650 रुपये प्रति क्विंटल बिकी, बाजरा 2225 से लेकर के 2325 रुपये प्रति क्विंटल रही। तो अब किसान भाई देखिए चौपाल का समय पूरा होने जा रहा है, हमें दीजिए इजाजत। जय जवान जय किसान।

आपने सुना कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का सबसे पहला नगमा सुनिए फिल्म कुर्बानी से, जिसे स्वर दिया है कंचन, मनहर उदास और आनंद ने। गीत रचना इंदिवर की, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म जुर्म से।

गीत रचना इंदिवर की, स्वर दिया है साधना सरगम और कुमार सानू ने, तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

लहू के दो रंग। इस फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार को सुना, गीत रचना थी फारूक कैसर की और संगीत से सवारा था बप्पी लहिरी ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म वारिस से। स्वर दिया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने, गीत की बोल लिखी है वर्मा मलिक ने और तर्ज बनाई है उत्तम जगदीश ने।

शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया गीत अभी आपने सुना, जिसे स्वर दिया था मुकेश ने, फिल्म थी यहूदी और गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर के स्वर में जिद्दी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत और लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं गफरुद्दीन मेवाती के लोक गाथा।

0: भरगोई तो शिकारी सी
1: जन्म पे दो राजा ने।

0: गोरी आई
1: ओए मंदिर में एक गोरी आई
0: मंदिर में एक गोरी आई मंदिर में एक गोरी आई
1: हम वो जाते हंस बदलाई
0: हम वो जाते हंस बदलाई हम वो जाते हंस बदलाई
1: हम वो जाते यूं हंस बदलाई हम वो जाते हंस बदलाई
0: मोटा से जब बदलाई हंस मोटा दे जब बदलाई
1: लडवन को भर रखो तू मां
0: आई लडवन को भर रखो तू मां लडवन को भर रखो तू मां
1: लडवन को भर रखो तू मां लडवन को भर रखो तू मां
0: लडवन को भर रखो तू मां लडवन को भर रखो तू मां
1: लियो हो तो मेरो बिचू मां लियो हो तो मेरो बिचू मां
0: लियो हो तो मेरो बिचू मां लियो हो तो मेरो बिचू
1: मां मंदिर में जब गोरी घुस आई
0: मंदिर में जब गोरी घुस आई
1: ए मंदिर में गोरी घुस आई
0: मंदिर में गोरी घुस आई
1: बाबा जी ने पास बुलाई
0: बाबा जी ने पास बुलाई

0: बाबा
1: खाना भगोई सारो देखे
0: खाना भगोई सारो देखे खाना भगोई सारो देखे
1: अर्जुन भगो सो होतराय देखे
0: अर्जुन भगो सो होतराय देखे
1: अर्जुन गयो सो होतराय देखे अर्जुन गयो सो होतराय देखे
0: अर्जुन गयो सो होतराय देखे
1: ए दाऊ जी तो खूब रिसाए
0: दाऊ जी तो खूब रिसाए दाऊ जी तो खूब रिसाए
1: अपने हलमु सत्संग लाए
0: अपने हलमु सत्संग लाए अपने हलमु सत्संग लाए
1: अपने हलमु सत्संग लाए अपने हलमु सत्संग लाए
0: अपने हलमु सत्संग लाए अपने हलमु सत्संग लाए
1: दाऊ जी तो खूब रिसाए
0: दाऊ जी तो खूब रिसाए दाऊ जी तो खूब रिसाए
1: अपने हलमु सत्संग लाए
0: अपने हलमु सत्संग लाए अपने हलमु सत्संग लाए
1: अब तो अमृत हुए पे लोका

0: हो अर्जुन से राजी, कृष्ण हो अर्जुन से राजी,
1: कृष्ण हो अर्जुन।

ਸਾਰੇ ਜੋ ਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ।

0: भाई
1: बकवास कर।

0: योगेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: देखे कर

Stephanie!

0: के पूरी भटक भटक में तो जानू हूं सो देखे करियो
1: भटक भटक
0: अब रसिया आगे चलती हो
1: अब रसिया आगे चलती।

0: ठिकाना।
1: कैसे त्रिया फिरे अकेली,
0: कैसे त्रिया फिरे अकेली, कैसे त्रिया फिरे अकेली,
1: कैसे त्रिया फिरे अकेली।

रज्जा किया।

0: की सुदियाई, अब रसिया घर की सुदियाई,
1: अब रसिया घर की सुदियाई भाई, अब रसिया घर की सुदियाई,
0: अब रसिया घर की सुदियाई, अब रसिया घर की सुदियाई।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

अभी आप सुन रहे थे गफरुद्दीन मेवाती और उनके साथियों को लोक संगीत में, और इसी के साथ लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का

0: अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्य

0: के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनके यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर

0: हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
3: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
2: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
5: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with News at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2030.

मधुमति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों सखियों की आवाजों में शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे सलील चौधरी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है। गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई।

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया, लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की।

0: जो हम।
1: अख्तरी भाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा।

1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाई तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगी और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान लिए? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

तीस के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए।

सन 1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गई। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गई। उन दिनों में वो बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह यह है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने गाना गाया।

बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थीं, जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को यह गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रहीं।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती है।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मुसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नयेपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मुसीकार नयेपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं,

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है तब।

0: मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना भूले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ,

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुख।

0: जाए रात।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
3: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
2: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी

0: पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 MHz पर या आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय रात्रि के ठीक 11:05 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह की प्रसारण सभा में 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।